ते हर हर रूप संवासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी।

दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल, कृपा दुष्ट तन जाहे ने हर हव, ताके ताप तनक मैं हर हव, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छा शबाए सके न कोई, एक बार जंत में संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन्नर नाम तिहारों कहा, दार्द दुष्ट दोखते रहा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दलिहु उबारी, सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दो

सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी संत साजन भए

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास्यों ही सहाए। अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण दे आई आय जिस डिठे शब्द फजाए। तेग बहादुर सिमरियाए कर नाउन दया वैताए। सब थाई हुए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाए दसा पातशाहियां दी जोत। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौं साहिबजादियां चालिया मुक्तियां।

0: जे बहर न करना सो पद रवो जे बहर न रवना सो ध्यान धरहो जे बहर न तरना ऐसे मरहो जे बहर न मरना पहला मरण कबूल जीवन की छड आस हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास कबीर मरता मरता जग मुआ मर पी न जान्या कोए ऐसी मरनी जो मरे
1: पावर न मरना होए
0: महान शहीदां दी याद विच समूह संगत बड़ी श्रद्धा ते भावना दे नाल जुड़ बैठे जे धन गुरु अर्जन साहब महाराज दी लसानी कुरबानी और जून 84 दे समूह शहीद सिंघां दी याद नू महान गुरमत समागम इथों दे प्रबंधक जना संगतां ने रखिया है साढ़े तो पहलों गुरु प्यारे आप जी दे नाल जो अज महान दिहाड़ा उस भाई महंगा सिंह बब्बर दा है जिन्हें अज दे दिन शहादत पाई उन्हां दी मैं कविता कहण दा जिक्र करूँगा। आओ सारी संगत एक बार सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अद वे सी चुकाओ ते गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा
1: खालसा
0: वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं एक बार सिखा ने पुछया महाराज जी इस दुनिया दे अंदर सब तो उच्चा ते सुच्चा सिरे दा काम केड़ा ते गुरु अर्जन साहब महाराज दे वचन हन हर कीर्त साध संगत है सिर करमन के करमा कहो नानक तिस भयो प्राप्त
1: जिस
0: पुरब लिखे का लहना
1: लिखे का लहना।
0: सिखो दुनिया विच सब तो उच्चा ते सुच्चा जेड़ा सिरे दा काम है ना वो है सत संगत कर लेनी। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया
1: सो तरिया
0: भागे भागा वाले जे जिन्हां नूं सुभा घड़ियां दा समा प्राप्त होया धन गुरु अर्जन साहब महाराज जिन्हां दे प्रथाए भट्टां दे बड़े सुंदर बचन हन सिमरन सोई पुरख अचल अबनासी जिस सिमरत दुरमत मन रासी सतगुर चरण कमल धारंग गुर अर्जन गुण सहज विचारंग गुर रामदास कर कियो परगासा सकल मनोरथ पूरी आसा तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस बखाण्यो भगत जोग को जैतवार हर जन को पायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुरु नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो
1: गुर
0: अर्जन
1: घर
0: गुर रामदास भगत उतर आयो। ऐसे दीन दयाल सतगुरु दा आपा शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं। चंदू दीवान जो जहांगीर बादशाह दा दीवान सी ओदी लड़की जवान हुई जदों लड़कियां जवान हुण फिर मापे उन्हां दे साक बारे उन्हां दे व्याह बारे विचार करदे आ। चंदू दीवान ने अपने लागी नाई ते पांदे नूं क्योंकि पहला जेड़े रिश्ते वेंदे हुंदे सी ना ओ नाई ते पांदा ही तय करिया करदे सी हुण ते उस तो बाद फिर रिश्तेदारी विचोले आ गए फिर मां प्यो ते भैण जांदी वेखण हुण ते गुरु कृपा करे ना ही खुलासा कराओ पहलो नाई ते पांदा रिश्ता वेखण जाया करदे सी। आओ चंदू दीवान ने आख्या मेरी लड़की जवान हुई आ कोई चंगा तलीमदार लड़का जेड़ा पढ़िया लिखिया होवे उच्चा जवान होवे सोहना होवे ओ लड़का पसंद करके ओ घर भी चंगा होवे ते वर भी चंगा होवे जिस तरह चंदू दीवान अपने लागियां नूं एक पक्की करदा है ओना लैणा नूं तुहाडे सामने कोरड़े छंद वे जोड़ी इंज बयान कर रही।

0: मोलिया है मन विश्वकर्मा दा देखा दुख टूट जे जरमा दा
1: वो देख के मंदर भंका मेरे मन में फिर गई शंका रावण दी जापे लंका पर उस विच बड़

पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पवखंडना तेरे आरती अनहता शब्द वा जंत पेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे कौ सहस मूरत नना एक तोहे। सहस पद बिमल नान एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोहि। सब मह जोत जोत है सोए तिसदा चानन सब मह चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस पावै सो।

दिन आद गुर ए नम है, जुगाद गुर ए नम है, सत गुर ए नम है, श्री गुरुदेव ए नम है, अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पाव, कल कलेह तन माह मिटाव, सिमरो जास विषम पर एक है, नाम जपते अगंत अनेक है।

प्रभ कै सिमरन सब कह सुजय प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माह समाय प्रभ जी बस है साध की रसना नानक जान का दासन दसना प्रभ कौ सिमर से तन बंते प्रभ कौ सिमर से पत बंते प्रभ कौ सिमर से जन प्रवान प्रभ कौ सिमर से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमर से बे महताजे प्रभ कौ सिमर से सर्व गिराजे प्रभ कौ सिमर से सुखवासी प्रभ कौ सिमर सदा विनाशी सिमरन ते लागे जन आव दयाला नानक जन की मंगे रवाला प्रभ कौ सिमर से पार पुकारी प्रभ कौ सिमर तन सदबिहारी प्रभ कौ सिमर से मुख सुहावे प्रभ कौ सिमर तन सुख बिहावे प्रभ कौ सिमर तन आत्म जीता प्रभ कौ सिमर तन निर्मल जीता प्रभ कौ सिमर तन अंध घनेरे प्रभ कौ सिमर बसे हरनेरे संत कृपा ते अण दिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कभ न झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन नेह चल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिंगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जन का प्रभ माया नानक तिन जन सरणी पाया हर सिमरन कर भक्त प्रगटाए हर सिमरन लाग भेद उपाय हर सिमरन पहे सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीत चहु कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना

के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत न पाई मन ऊहा नाम तेरा है संग सुहाई जय महापयान दूत जम दलय तह केवल नाम संग तेरा है चलय जय मुस्कल हो वे अत भारी हर को नाम खिन माय उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरह हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरमुख नाम जप मन मेरे नानक पाप सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया

आप प्रभ दीना। हर हर जन कह उठ स्थानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर सराते, सुन समाध नाम रसमाते, आठ पहर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे, हर की भगत।

राम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुरत सब नसै संत का संग भागी पाई संत की सेवा नाम।

ऊच बहुत सियाणप जम का पहु ब्यापे अनक जतन कार्य त्रिसणना त्रापे पेख अनेक अगन नहीं बुझे कोड़ उपाव दरगह नहीं सिजय छूट सना ही।

कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुम रंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुम रह सूत्र धारी, तुम ते हो सुभाग्यकारी।

कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी देह प्रसाद शक्ति अमृत खाए तस ठाकुर कौरा खमण माहे देह प्रसाद सुगंधन तन लावे तस काव सिमृत परम गत पावे देह प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याय सदा मणि अंदर देह प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमर हो तिस रसना देह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग देह प्रसाद पाड़ पटंबर हंडावे तिसे त्याग कत अवर लुभावे देह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जास गावी जय देह प्रसाद सब कौ माने मुखता को जास रसन बखाने देह प्रसाद रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु दी जब दर गए मान पावे नानक पासे ती कर जावे देह प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लाभ हो तिस राम सनेही जे प्रसाद रहुला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके जे प्रसाद तेरे को ना पहु चै मन सांस साह सिमरो प्रभु चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भक्त करे जे प्रसाद भूखण पहरी जय मान तेह सिमरत क्यों आलस की जय देह प्रसाद असव हरते सुवारी मान तेह प्रभु को कब हू नाम विसारी देह प्रसाद बाग मिलिख तना राख प्रोए प्रभु अपने मन जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सल तिसेह त्याई तिसेह त्याय जो एक अलख है हां ऊ हां नानक तेरी रख है देह प्रसाद करे पुन बोदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान देह प्रसाद तू विचार व्यवहारी तिस प्रभु को साह साह चितारी देह प्रसाद रस सुंदर रूप सो प्रभु सिमर सदा रूप देह प्रसाद तेरी निकी दाल सो प्रभु सिमर सदा दिन रात देह प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह देह प्रसाद सुनहे करनाद देह प्रसाद पेखे बिस्माद देह प्रसाद बोलहे अमृत रसना देह प्रसाद सुख सहजे बसना देह प्रसाद हत कर चल है देह प्रसाद संपूर्ण फल है देह प्रसाद प्रेम गत पावे देह प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभु त्याग अमर कत लंघ गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूला मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मर मूर तू ताको जा जय प्रसाद रे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता स्यो राज जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जापै जप सोए आप जपाए जापै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिंगास

ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता हुए। सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथास्पदी। साध कह संग मुख उजल होद साध संग बल सगली खोद। साध के संग मिटे वहन साध के संग प्रगटे सो ज्ञान। साध के संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब हो तन बेरा। साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभु मह समानी। साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा पर फुले। साध के संग आभ बस पंचा साध संग मृत रस पुंचा। साध संग हुए सबकी रैन साध के संग मनोहर बैन। साध के संग न कतहू तावे साध संग अस्तित मान पावे। साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत। साध संग केह स्यों नहीं बैरू साधक संग न भींगा पैर। साधक संग ना ही को बंदा साध संग जाने परमानंदा।

साधक संग न कबहू तावे, साध कै संग सदा सुख पावे। सा संग बहत गोचर रह, साधु कै संग अजर सह। साधक संग बसे थान ऊचे, साधु कै संग महल पहुचे। साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म। साधक संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बानु।

कवर सावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुरदेवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध के संग नहीं कछ काल साध के संग नहीं कछ काल दर्शन भेट होत निहाल साध के संग कलुहत हरे साध के संग नरक पर हरे साध कै संग ईहा ऊहा सोहेला सा संग बिछरुत हर मेला।

तुम रास ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सिंह ब्रह्म ज्ञानी के दृह ते अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी सुमाह ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हो इस पलहा ब्रह्म ज्ञानी सुफ

परिवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख छय निवास नान, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघ हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै होय चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जैस करे प्रभ्याम, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी का बाल बाल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी कहो जय महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आम परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी

का सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार, ब्रह्म ज्ञानी आवरिंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बणी नान, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि श्लोक।

कही जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाव जे जद घर कह तैसा दिन नाव आपे करण करावन जोग प्रभ भाव सोई फन होग पसरियो आप होय अमृत

कई कोट प्राप को खोजंत आत्म है पार ब्रह्म रहंत है कई कोट दर्शन प्राप प्या तन कौ मिले प्राप यमनाश कई कोट महंग सत संग पार ब्रह्म तन लांगा रंग जन कहो आप सो

नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास दिन होवत आप तुम बृंगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे अमृ भय सत सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे आ तुम रस सुख सहि सुमावे, अपने जन को साथ साथ सुमारे, नानक परमेश्वर के प्यारे सलोक करन कारण प्रभ एक दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहार ने जल थरमय सोए। अष्टपदी

जगदीश जियो पिंड सब तिस की रास कर कर पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बलत आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बल नाई इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भाव सोई फुन थियो कभू त्रिज में बसे कभू सो गर्ख रंग

क्रोध विकराल, कब हूँ सर्व की उतरवाल, कब हो बह बड़ राजा, कब हो पे खारी नीच का साजा, कब हो अब की रित में है आवे, कब हो पला पला कहावे।

छूटै सस खटहे लाख का उठता वह तृप्त नावह माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृप्ता वह खाप खाव मरे बिना संतोख नहीं को राजे स्वप्न मनोवर्त भी थे सब काजे नाम रंग सर्व सुख हो बड़भागी किसे प्राप्त हो कर्ण करावन आपे आम सदा सदा नान कर जाव करन करावन करने हार इसके हाथ कहाँ बिचार जैसी दृष्टि।

सेवक सास सास मारे अपने धन का पर्दा ढाक के अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को देह बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई।

परे प्रेम रस रंग जय चाओ साध के संग परे सरनान सब त्याग अंतर प्रगा संदन लिवलाग उठभागी जपया प्रभ सोय नानक नाम रते सुख होय सेव की मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक की नौ सदा निहाल बंधन काट मुख जन पहया जन मरण दुख ब्रह्म गैस पुनी सरदा सा पूरी रब रहया सतसंग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाये सो क्यों बिसरे जे काल न भाने सो क्यों बिसरे जे जिया किया जाने सो क्यों बिसरे जे काल न भाने सो क्यों बिसरे जे किया जाने

तने अंतर इहि सुभाव नेत्रोपेख दर्श सुख होय मन बिकसे साध चरण तोहे भगत जना कह मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस दी जे कर मैं अंगर प्रसाद नाम जप लय ता कहीं न जाय नानक रह सर्व समाय प्रभ भगसान दीन दयाल भगत बछल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल

प्रसन्न गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नान प्रगास रोग सरगुण गुण अंकार सुन समाधि आवापन किया नानक आपे ही प्रजावस्तपति जब कार्य कह न दृष्टेता पाप पुन तब कहते हो तब जब तारी अपन संसमाद दब बैर विरोध के संक मात जब इसका वर्ण ते न जापत तब हरख सो कहो किसे व्याप्त जब अपने आप आप पार ब्रह्म तब वो कहा किसो वत पर में अपन खेल आवर्ती जानक कर निहार न दूजा

अधूर कथना कथी न आवे तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मे।

निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पात स्यों प्रगट जाए, मन्ने मगन चल पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख अलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करहे पार, नानक नीच कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद पावै साई परिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाम असंख थाम, अगम अगम असंख लो, असंख है सिर पार हुए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुन गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजो

कछ पकाई उथे पाए नानक गया जप जाए। धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म किते पवन पाणी वह संतर किते कान महेश किते बरमे घाटत घटिय रूप रंग के वेश कितिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मन केते केते रतन समुंद कितिया खाणी कितिया बाणी केते पात नरिंद कितिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाटत घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पछताहे तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिदाकी सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महाबलसूर तिन मह राम रहे आ भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओह मरे ना ठागे जाहे जिनके राम वसे मन माहे तिथे भगत वसे के लो करे आनंद सच्चा मन सोहे सचखंड वसे निरंकार कर कर वेख नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथे ता अंत ना अंत तिथे लो अलो आकार वेख।

अगर जन्म मरण विहीन चकल बकल फिरे चतुर चकमानी प्रतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आदि विनाद मूर्था प्यो सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सब रचियो स्वयं भव गण पंजन हार कालहीन कला सुयुक्त काल पुरखा देश धर्म धाम सु परम रायता भूत लख भेस अंगरांगरा रंग जाके जात पात नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्तदाय काम आप रूप अमीक अनु औसत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्वंजन आद्रुप सूत अंगहीन भंगनात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व गायक सर्व गो प्रतपार सर्वगंता सर्वंता सर्व तेन भेद सर्व शास्त्र न जाने जय रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जाके नेत भाक्त नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवय वह चित मद बहार छंद प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन भंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्तन आनास आजान बाहु शाहान शाह राजान राजन पान आन पान देवान देव महान इंद्रान इंद्र बालान बारंकार अंकारान काल अनभुदंग अब अभंग गत मित अपार गुणगन उदार मनगन प्रणाम निर्भय काम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म आदस्य पर धर्म आलस्य कर्म आदस्य धर्म सर्वा पर नाढ़े अंडन बाढ़ चाचरी छंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरे नरनामे अकामे भुजंग प्रयाद छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्या चतुर चक्र दान्य चाचरी छंद न सतरे न मित्रे न परमंग न पितरे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्र परे है पवित्र प्रतिस अधिस अदृस अकृस भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आ छिज देसा के आ पिज बेसा के आ गंज कर्म के आ पंज भरम के आ पिज लोके के आ दित सुख के अवधूत भरने के विभूत करने के राजंग प्रवाह है के धर्मंग तू जा है के आ शोक भरने के सर्वा अपरण है के जगत करती है के शतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुभव अनुप के आद आदेव है के आप अभेव है के चतरंग भी न के एक अधिन के रुचि रजा के रही में रेहा के पाग बेआब के गैबल गैब है के अफुल गुनाह के शाहान शाह के कारण करिंद के रोजी दहंद है के राजक रही में के गर्भंग करी में के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वतर माने के सर्वतर दान है के सर्वतर गौणे के सर्वतर पावणे के सर्वतर देशा है के सर्वतर पेशा है के सर्वतर राजा है के सर्वतर साजा है के सर्वतर दीना है के सर्वतर लीना है के सर्वतर जा हो के सर्वतर पा हो के सर्वतर देशा है के सर्वतर पेशा है के सर्वतर काल है के सर्वतर पल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र मानय सदैव प्रदान।

रहे लोक मिल लाए ससे ज्यो मिल रहे लोक मिल लाए ऐसा सतगुर जे मिलाए तसुंसर सौंपिए बिचू आप जाए जिसा ज्यो तस मिल रहा है हर वसा मन आए हर आप अमल कह भाग तना के नानका जिन हर पल पाए हर रास मेरी मन मन जारा हर रास मेरी मन मन जारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जप्यो जियो लाह कट्यो दिहाड़ी एह धन तना मिलिया जिन हर आपे भाणा कहे नानक हर रास मेरी मन होआ बंजारा ए रसना तू आन रस राच रही तेरी प्यास ना जाए प्यास ना जाए होर तकिता जिचर हर रस पल्लै ना पाए हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बहुना तृष्णा लागे आए यो हर रस करमी पाईए सतगुर मिलै जिसे आए कहे नानक होर आन रस सब विसरे जा हर वसे मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया गुरप्रसादी बुझया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कहे नानक सृष्ट का मूर रचया जोत राखी ता तू जग में आया मन चाओ पिया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल सखिए सोग दुख ना व्यापय गुर चरण लागे दिन सभागे आप ना फिर जा पाए अनत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहे नानक प्रभ आप मिलिया करन कारण जोगो ए शरीरा मेरिया ए जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया ए कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जन हर तेरा रचन रचया सो हर मन न मसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया कहे नानके शरीर प्रवान हुआ जन सतगुरु स्यों चित लाया ए नेत्रो मेरे हो और तुम मैं जो तरी हर बिन अवरना देखो कोई हर बिन अवरना देखो कोई नदरी हर निहालिया ए संसार तुम देख दे ए हर का रूप है अरूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझया जा वेखा हर एक है हर बिन अवरना कोई कहे नानक ए नेत्र अंध से सतगुरु मिलै देव दृष्ट होई ए सबनो मेरे हो साचे सुनणै नु पठाए साचे सुनणै नु पठाए सरी लाए सुनो सतबाणी जित सुनी मंतन हरिया हुआ रसना रस माणी सच अलख बिडाणी ताकी गत कही ना जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो

खाना पीना पहनण कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिंसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत वधिया कुदरत माने अपमान कुदरत पौन पड़ी बैसा।

पारस भेट परस करियो। रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। अब राखो दास पाठ की लाज, जैसे राखी इलाज भगत प्रहलाद की। हर नाकस पारे करे आज।

काम क्रोध की वृथा गई। अब लोकया ब्रह्म भरम सब छुटकया दिव दृष्ट कारण करण सर गुर गुर सेव अलख गत जाके श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै एक पढ़ सुनै गावै प्रभात करै इसनान इसनान करै प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहित करूं कंचन तन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान तरूं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह पूर रहया जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्ण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण जिनो बात निश्चल त्रो जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरियो समुद्र रुद्र खिन एक मह जल हर बिम जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहिब सब उपर मन बच करम सेविया सचा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कबल नैन मधुर वैन कोट सैन संग सोभ कहत मां जसोद जैसा दही पात खाहि जियो देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई किंकनि शब्द जनत कार खेल पाहि जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सका इस बम ज्ञान ध्यान तरत ही अचाहि जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसमार सरबर को काहे जियो सुतर चित भगत हित भेख तरयो हरनाक्ष हरयो नख बदार जियो शंख चक्र गदा पद्म आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लख्या कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीत बसन कुंद दसन प्रया सहित कंठ माल मुक्त शीस मोर पंख चाहे जियो बेब जीर बड़े तीर धर्म अंग अलख अगम खेल किया आपने उशाहे जियो अकाथ कथा कथी न जाए तीन लोक रहे असमाए सुतै सिद्ध रूप तरयो साहन कैसा है जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोबिंद जियो बलै छलन सबल मलन भगत फलन कान कुआर नह कलंक बजे डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवन दुर्त दवन सकल पवन कुशल करन सर्वभूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मछ कछ हो बरा हजा मना कैकूल खेल खेलो जन गिंद जियो नाम सार ही तार ताज विकार मन गयंद सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोबिंद जियो श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर कहया मान निज निधान सच जान मंत्र एह निस्वसर होए कल्याण लह परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन सो छाड़ तो होमे का फंद काट साध संग रत जियो देह गेहो त्रै स्नेहो चित बलास जगत एहो चरण कमल सदा सेव दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही तार ताज बिकार मन गयंद श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो सेवक का भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सकै को तू कद का ब्रह्मा विष्णु सिरे तै अगनत तिनको मोह भया मन मदका चबरासी लख जोन अपाई रिजक दिया सबहू को तदका सेवक का भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसा आप ही चित बै आपे चंद सूर परगासा आपे जल आपे थल थमन आपे किया कटकड़ वासा
ਆਪੇ ਨਰ ਆਪੇ ਫਨਨਾਰੀ ਆਪੇ ਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਸਭੈ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸਾ ਕੀ ਅਖੇਲ ਬੜ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ।

ज्ञानी जीव सदा सदा सुरति ही पत हुई। सर्प है सर्प है सदा सदा एव गई विहाई। नानक किसनों आखिया बिन पुछया ही लै जाई। दोस न देहो राय नो मत चले जा बुढ़ा होवै। गल्लां करे कनेरियां ता अन्ने पवना खाती टोवै। पूरे का किया सब किछ पूरा घट वध किछ नाही। नानक गुरमुख ऐसा।